0: सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बने शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी।

5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ततः धर्मेन्द्रप्रदानस्य त्यागपत्रं तत्क्षणप्रभावेण स्वीकृतवती. धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लाद जोशी नूतनशिक्षामन्त्री भविष्यति. वर्तमानदायित्वेन सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्.
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा. प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी.
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया रोमानिया देशानां आधिकारिक यात्रां संपन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती. अस्यां यात्रायां अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि. तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिक यात्रा सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा सम्मिलिता अस्ति. समग्र यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताः अकरोत्. व्यापार मंचान संबोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्. प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं

0: कई कहानियाँ होती हैं, कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लम्हे। हर दीवार हर कोना दास्तां बयां करता है
1: और इन पलों की मजबूत नींव है चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट। 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस फॉर योर होम।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परम्परार एकनिष्ठ प्रवक्ता आकाशवाणी।
1: श्रोता बंधु शुणिले केतोटी सूचना आकाशवाणी ब्रह्मपुर समय सकाळ 8:00 हेबाकु जाउछि। शुणन्तु आमर परवर्ती कार्यक्रम हिंदी एवं इंग्राजी संवाद रिले करि प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्ली किछि समय मध्यरे।

0: थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
2: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।

0: संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
1: द्रास में आज 27वें करगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह करगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपत पर पुष्प चक्र अर्पित कर करगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक टू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। करगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौज

0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरलीधरन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखा है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJP के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJP ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJP ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वहीं नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। चौथे साल टैक्स भरने में कंपनी से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनी को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है। शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमें अपने कई जहाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और सारे सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई

0: बोल के रिटेल मार्केटेड है। एंड सीआरजे नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैंग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते, वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते। तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए, उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये सीआरजेड का वायोलेशन है, इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए। एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दिस आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट बाई कोर्ट, जिसपे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बचना है, यहाँ पे पूरा सुंदरबन एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफी लॉन्ग टर्म होता है। एनवायरमेंटल इज वी रीड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस, इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन। एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल जस्टिस वी शुड टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग the ground where the public is actually staying. Certainly rules and regulations are made in the top tier, but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial, so that the regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi. So that's how we can achieve through environmental justice when it's top down rather than it's bottom-up approach, it should be there.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: निशा इसकी के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जाती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल Ministry of Environment ने इंट्रोड्यूस किया है NIC के साथ, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल विंडो सिंगल विंडो दिया गया है फॉर एड्रेसिंग द एप्लीकेशंस कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल

किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट प्रपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजंस जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि CPCB है, SPCB है, CEA को, या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को भी लिख सकते हैं।

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत, जिसे शुरू में ढाला है प्रीतम ने। आवाज अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की, फिल्म का नाम दिलवाले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमें तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आप मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुधीर फड़के का नाम लेते ही स्मृति में ज्योति कलश छलकने लगता है और संगीत के पवित्र सुरों से मन आंगन आलोकित हो जाता है।

सुधीर फड़के ने बहुत फिल्में तो नहीं की हैं, पर मराठी सिने जगत और गैर फिल्मी संगीत जगत में सुधीर फड़के एक शीर्षस्थ संगीतकार रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासूवास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फडके का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्य गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुळकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फडके की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे काजई गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुर्जा बाउस, जीवाचा सखा, लाखाची गोष्ट, ईमीन साढ़े तीन और सुवासिनी वगैरह।

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि गदी माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: मानसि आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व तव मानसि आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध शब्द कदिम मधुर दसि लागला लंके वर काल कठिन राज पातला विभीषण कृत सत्य कथन अप्रिय परिपथ्य वचन विभीषण कृत सत्य कथन अप्रिय परिपथ्य

0: मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भर
2: अच्छा दास बाबू आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले एपर्यंत एते स्ट्रांग केम अछि
3: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतले मोर विश्वास रखतली एवं आजि मध्यम चेटिनाड सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष रे बरम पीढ़ी पे रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्ष रो दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 साल की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: श्रोता बंधु समय हो जाएगी सुनिबा के तुटी हिंदी एवं ओडिया चलचित्र गीत किसी एक विषय को नहीं। आज हूँ श्रोता बंधु कारगिल विजय दिवस तेणु आज आम नहीं किसी गीत जहाँकि आपण मान हृदय को छुईब एवं आपण मान हृदय देश प्रीति जाग्रत कर। कारगिल युद्ध आम देश एक माइलस्टोन भाई जहाँकि विजय लक्ष्य नहीं आरंभ होता आजय हासिल करगिल विजय मुख्य नायक थी विक्रम बत्रा आउ आज आम ए विजय दिवस स्मरण करुचु से ही उद्देश्य आम गीत गुड़ी नहीं छु। प्रथम गीतटी नहीं छु ओडिया चलचित्र भाई भाउज मिलित भाव कर्तन कर सिकंदर आलाम एवं आरती मजुमदार।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जा

लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कह रहा है
6: जानकार बने, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। दो तीन दिन पूर्व ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैद रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैद द रेन

एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इससे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियड हुए। इन कंपटीशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक

प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। दो कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है।

जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक, सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गिर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गिर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर

लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे इन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकट की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मैं आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए

आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंगफ्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी हर कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जुड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी किया जाएगा। मन की बात

0: प्रभार दिया गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये दायित्व सौंपा गया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत के अनहर सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म एलओसी करगिल से। आवाज है रूप कुमार राठौड़ की, जावेद अख्तर की रचना है, अनु मल्लिक का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं क्रांति फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उसी नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सही को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद एक
2: और जल्दी बुलबुल कोई अपना कर्जेदार लग गया पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सही परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए।

0: के जीवन में भूलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, तनों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेके रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम एक टेक्स्ट या इबारत पोस्ट करते हैं, उसमें कुछ शब्द होते हैं और कुछ

होती है, परंतु प्यार करने वालों को भी तो वृक्ष की तरह खुद धूप सहते हुए अपने साथी को छांव देना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, भाई एक नहीं अनेक श्रोताओं ने लिखा है, जो राह चुनी तूने और मेले से जुड़े हुए बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखा है, और दुनिया का मेला, मेले में लड़की, और दुनिया ये मेला है, और मेले पर तो बहुत सारे गाने लिख भेजे हैं हमारे श्रोताओं ने, जो फिल्म गुप्त का है उदित नारायण की आवाज़ में, दुनिया हसीनों का मेला। एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याल है सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं है, बल्कि जिंदगी के यथार्थ और मोहब्बत के सुकून का अनूठा संगम है। ये गाना सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि जीवन में सच्चा हम सफर हो तो जिंदगी की धूप भी घने साए में बदला जा सकता है। जरा बताइए कि अब कौन सा वाला गाना हो सकता है, क्योंकि जो हाय रे वो दिन क्यों ना आए, कि गाना आया आपके जहन में क्या? अगर इसके अलावा कोई गाना आया हो तो बताइए। हम फिलहाल यही गाना सुनवाते हैं, फिल्म अनुराधा। आपको पूछना है कौन हीरोइन कौन हीरो, साथ में गीतकार संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी बताइए। फिल्म अनुराधा। और मेले से जुड़ी हुई याद भी साझा कीजिए।

ये जो गाना था इसका शब्द बाकायदा जो इबारत है, इबारत की शुरुआत में ही आ जाता है, लेकिन इस गाने का जिक्र बहुत कम मिला। हालांकि बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं और अनगिनत गाने लिख रहे हैं, कहीं धूप तो कहीं छाव, सुख दुख दोनों रहते जिसके जीवन है वो नाम, कहीं धूप तो कहीं छाव, कवि प्रदीप की रचना है। और ये बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के वो लिखे हैं, जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, फिल्म मेला। और एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याल आया, फिल्म साथ साथ का कालजयी गीत सुनाया आपने, और अनगिनत श्रोताओं की अनगिनत टिप्पणियां आई हैं और हम आपको बारी बारी से सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन के वो दिन भी क्या दिन थे, भाई बहनों के साथ खंडवा के बीच लगने वाले नाम सप्ताह के मेले में जाना, झूले झूलना, वो चहल पहल और फिर वही परंपरा अपने बच्चों के साथ दोहराना। ये अनुभव दिल के बहुत करीब होता है, वक्त कितनी तेजी से बदल जाता है, लेकिन शहर और वहाँ के मेले से जुड़ा लगाव कभी कम नहीं होता। एक श्रोता ने और लिखा है कि मेले का जिक्र हुआ तो अभी हमारे शहर में मेला लगा हुआ है और ये गाना, ये बात सुनकर हमें याद आ गया। तो जरा बताइए कि मेले वाली कौन सी याद इस वक्त आपके जहन में आई है, मेले में कौन सी चीज आप जाकर खरीदा करते थे, क्या वो मेले में जाकर वो जो बुढ़िया के बाल है वो याद आया कि वो खरीदते थे, और खिलौने मिट्टी के लकड़ी के बहुत सारे खिलौने खरीद कर ले आते थे वो याद आया, और फिर जो सस्ते दामों पर किताबें मिलती थी क्या वो भी याद आया, और वो भी याद आया कि कभी अपने पिता की उंगली थामकर, माँ की उंगली थामकर मेले में आप घुमा करते थे और कभी उंगली छूट गई तो कितनी घबराहट होती थी, ऐसे लगता था अब क्या होगा, अरे कहाँ गए, बस रोना आता था। कभी ऐसा भी हुआ? मेले में जाने के बाद तो अनगिनत अनुभव हैं, तो उनमें से कुछ अनुभव आप साझा कीजिए। फिलहाल चलिए मेले का ही गाना सुनवा देते हैं, ये रहा ये गाना। अगर हाँ आपके जहन में और कोई गाना आ रहा है तो जरूर बताइएगा, अगर आपने टिप्पणियां भेजी तो एक गाना मेले का और सुनवाएंगे।

निखिल बदायवनी के बोल थे। और इससे पहले हमने अनुराधा फिल्म का गाना सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, रविशंकर का संगीत था, और कलाकारों के नाम भी हमने पूछे थे, लीला नायडू और बलराज साह ने। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल पूरी और सही जानकारी लिख भेजी है। और ये जो मेले वाला गाना था, इससे जुड़ी हुई भी बातें बहुत सारे श्रोता हमें लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में दशहरे का मेला जाते थे और मजा आज के बच्चे नहीं जान सकते हैं, और मेले से खिलौने खरीदा करते थे, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुराधा फिल्म का कालजयी गाना और सुनहरे पलों की याद और वर्तमान के अकेलेपन की एक बेहद खूबसूरत और दर्द भरी अभिव्यक्ति है। दरअसल जब बात मेले की चली है तो हम भीड़ भरे मेले में होते हैं कई बार, तब भी अकेलेपन का एहसास होता है, उस एहसास को भी आप साझा कर सकते हैं। एक आज के जमाने में खास तौर से एहसास हर किसी के दिल में होता है। एक श्रोता ने लिखा कि लता जी की आवाज जो है वो दिन क्यों ना आए, दिल की अल गहराइयों में उतर जाती है। और बहुत सारे श्रोताओं ने जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1968 में उज्जैन कुंभ मेला संतों की भीड़ भरी रैली में माता जी का हाथ छूट गया, शाम को जाकर पुनः उसी जगह माता जी और अन्य सदस्यों से मुलाकात हुई, राहत की सांस ली। एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में तो मेला देखने बहुत जाते थे, कुल्फी चाट पानी के बताशे खूब खाते थे और खिलौने खरीदने के लिए पैसे पहले से बचाने लगते थे। विजयदशमी पर तो मेला लगता ही था, उसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती। क्या बात है भाई, पानी वाले जो बताशे जिसे पानीपुरी भी कहा जाता है, और मेले में झूले झूलने का मजा भी होता था, एक श्रोता ने लिखा है। और मेले में जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता था जो अनुभव, वो था जो हिंडोला, जो बड़ा वाला हिंडोला गोल गोल चलता है, तो जब ऊपर की ओर जाता था हिंडोला तब तो ठीक, जब नीचे की ओर आता था तब कैसा एहसास होता था, ऐसा लगता था कि दिल की धड़कनें तेज हो गई और बिल्कुल दिल मुंह में चला आया है ऐसे। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी चलने का नाम है, कभी सुख है कभी दुख है, राह में कांटे भी मिलेंगे फूल भी मिलेंगे, प्यार बेवफाई सपने को सच भी करना, ख्वाब देखना उसे पूरा करने की चाह, तभी पूरा होगा जब हौसला हो। अब ये महल फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। हमने जो इबारत लिखी थी उस इबारत में कौन सा ये शब्द आ रहा है, जरा बताइए गाने में कौन कौन से शब्द हैं। गीतकार संगीतकार का नाम बूझिए।

महल फिल्म का गाना किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने संगीतकार का नाम गलत लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में बंदूक से निशाना लगाना अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गंगा दशहरे के मेले में मिट्टी के बर्तन लाते थे। और एक श्रोता ने लिखा कि बचपन में नवरात्रि के मेले में जाता था तो मुझे किसी भी रखी वस्तु पर लकड़ी की रिंग डालना अच्छा लगता। उसमें जिस वस्तु पर रिंग गिरे कि वो वस्तु अपनी हो जाती थी, लेकिन मुझे कभी कोई वस्तु मिली नहीं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में जाकर दादाजी के साथ चुटहिया जलेबी खाना याद आ गया। क्या बात है भाई, वो जलेबी कहीं कहीं कभी कभी मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल्ली के लाल किले के मैदान में मेला लगता रहता है और विभिन्न प्रकार के झूले लगते हैं। मैं जब भी मेला जाता हूँ सबसे पहले ऊंचाई वाला झूला जरूर झूलता हूँ, जिसे जॉइंट हील कहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने वाले बर्तन जरूर मैं खरीदती थी और वो कपड़ों वाली गुड़िया भी। फिर हम अपने छोटे से घरों में गुड़ियों के साथ खाना पकाते, शादी ब्याह करते। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में एक छोटा सा प्लास्टिक का गिलास, कीमत हर माल 6 आना का खरीदा। उसमें पानी भरने पर अंदर फिल्मी हीरो हीरोइन की फोटो दिखाई देते थे, उसे स्कूल के साथियों को दिखाते थे। क्या बात है भाई, गजब के अनुभव हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक हम नहीं बैठ पाए। और गानों के बोल बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बलिया में ददरी मेला लगता है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा से वो मेला शुरू हो जाता है और 1 महीना चलता है। उस मेले में गुड़ की जलेबी और गांव की महीन कारीगरी डलिया सूप और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। शादी के बाद मेरठ में नौचंदी मेला लगता है जो रात के टाइम लगता है और पूरी रात चलता है। इस मेले में नौटंकी भी आप

अधिकतर वो जब होता है तो बस होता है, आप चाहे न चाहे वो आपके साथ हो लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें जीवन की सच्चाई समझ आने लगती है। शांत स्वभाव यूं ही नहीं हो जाता, परिस्थिति और जीवन की समझ आपको राख में परिवर्तित करके आपके मन को ठंडा रखती है। प्रेम और जीवन का कोई बदलाव फिर आप पर असर नहीं करता, आप हर समय चुपचाप चलना सीख जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं ये गाना। बूझिए कौन है हीरो और बूझिए गीतकार का नाम। हीरो का नाम फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिल्म है दिल ने पुकारा।

और जो अभी गाना सुनवाएंगे उससे जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में कौन थे ये भी बताइएगा। फिलहाल आपने क्या लिखा है जरा बता दें। जिंदगी किसी किताब की तरह नहीं, एक हम सफर की तरह होती है। हर दिन एक नया पन्ना नहीं, एक नया एहसास देती है। जो उसकी हर बात को दिल से सुन ले, उसके सफर में शिकायतें कम और मुस्कानें ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर बात बेवफाई की हो तो फिर शिकायतें शिकायतें। जरा सुनिए ये गाना और बताइए इस समय आपके जहन में कौन से गाने आ रहे हैं जिसमें वफा शब्द हो और बेवफाई भी हो। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, हीरो हीरोइन का नाम बूझना है और गीतकार का नाम।

आते हैं, लेकिन बाद में उस चिमटे के लिए ललक दिखती है बच्चों में। तो बहरहाल अब आप जरा बताइए, थोड़ी सी कहानी भी मैंने बता दी, तो कौन सी कहानी है? अब आपको कहानी का शीर्षक पूछना है। हाँ, हमें आपके जवाब का जल्द इंतजार रहेगा। अगर आपने पढ़ी होगी कहानी तो जरूर बता सकते हैं। और अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि बाजार का मेला और जीवन के मेले में बहुत अंतर है। दुख सुख मान अपमान सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन ये जीवन है। दरअसल ये दुनिया भी तो एक मेला है। इस मेले में हम सब कहीं कई बार गुम हो जाते हैं, बस उसी मेले से निकल बाहर आते हैं और अपनी राह चुनते हैं। राह चुनने के लिए कई बार अवरोध भी पैदा होता है। तो आप ये भी बताते चलिए मैं कि क्या कभी आपने कोई राह चुनी मंजिल के लिए और किसी अवरोध का, किसी स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ा? मतलब बहुत सारे टोक टाक घर वालों ने वो मंजिल जाने पर, मंजिल तक पहुंचने पर ब्रेक लगा दिया हो और कहा हो कि नहीं, इस रास्ते से आप नहीं चलेंगे। तो ये बताते चलिए, और मुझे लगता है कि इस बात से जुड़ा हुआ कोई गाना आपके जहन में आ रहा होगा, जो हमारी इबारत में है शब्द, तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गोराई बीच के पास जहां विविध भारती मुंबई रेडियो स्टेशन है, उसके पास एसएल वर्ल्ड है। कहीं पर बहुत सारे राइड्स हैं, उनमें से रेनबो में बैठे थे। जब ऊपर जाते तब तो ठीक था, लेकिन जब नीचे सीधा उल्टा आता था तो सांस फूल जाती थी। तब 55 राइड थी उसमें, और उनमें से 50 राइड्स पे हम सब बैठे थे, लेकिन उसके बाद जाने का नाम नहीं लिया। अब तो बहुत सारे राइड्स

0: Kargil war. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
1: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
0: Mr. Modi said India is continuously strengthening technological capabilities. He highlighted recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है. जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए. इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही. मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है.
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the

0: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है
1: आज कारगिल विजय दिवस है ये दिन हमें गर्व से भर देता है ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है
2: Earlier, the CJP had withdrawn its agitation after the government agreed to its remark.
1: उनके सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि चार
2: जुलाई से इंडियन नेशनल्स रिक्वायरिंग कॉन्सुलर असिस्टेंस शुड कांटेक्ट द एम्बेसी ऑफ इंडिया और कॉन्सुलेट्स इन द रीजन
1: जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है इसके तहत बारिश के पानी के संचयन ग्राउंड वाटर रिचार्ज पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का

0: मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सी के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कसों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धा
1: के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोक बोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
0: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9958 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड का फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं मनीष रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने यह खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरुद्दीन कैशरद्दीन और नजमुद्दीन, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमिला, ज्योति श्याम कुंवर और अन्य साथी। इसी गाने की फरमाइश आई थी वरुण डौलका से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे की ओर से।

आपकी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता मनोहर, लक्ष्मण देवुलकर और

मोहम्मद रफी की आवाज में यह था सूरज फिल्म का गाना। रचना थी हसर जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश थी आप सभी की कमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके साथी। और इसी गाने की फरमाइश थी नेकीराम बासीवाल, जॉनी बासीवाल, धनराज बासीवाल की, श्री गंगानगर से, दमणी मानोरा से पेंटर तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, पेंटर संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे की फरमाइश थी। सुनिए अगला गाना, ये अपनी ही फरमाइश पर।

कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश देवांगन, आशीष रवि शनी, कान्हा और आदित्य इसी गाने की फरमाइश भेजी थी आप सभी ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत और प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल नूर, नमन सिमत, गुरमीत, गुरुशब्द, राहुल यहीं से मतलब जिला अंबाला से। आप सुन रहे थे रखवाला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद का। ये गीत फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म थी गीत। गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। कर्नाटक चिन्ना तिरुपति से प्रकाश श्यामला अश्विनी रमेश आनंद अमित और इनके परिजन, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार, दीपक और आसमा।

तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश भेजी थी गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। गांव कोट का बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान पटेल, टीना डांगी और लक्षित डांगी ने। इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, सुनील प्रसाद और इनके परिवार की ओर से। चांदनी चौक गवई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन और इनके साथियों की ओर से आई थी फरमाइश। अब आज का मचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो से ममता सिंह के साथ।

0: आज भाई भाई का दुश्मन क्यों? क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी।
2: ये कौन है?
1: वो आएगी।
2: आखिर ये क्यों घूमता है?
1: वो आएगी।
3: काफी साहब,
4: मेरी दोस्त, तुम किस सोच में पड़ गए? क्या मनोविज्ञान के किसी चैप्टर में खो गए?
5: कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आएगी। महानगरीय शोर शराबे के सीने को चिट्टी हुई आवाज तुमने सुनी?
4: हाँ, मैंने भी सुनी।
5: आखिर वो किसको बुलाता है?
4: देखो दोस्त, मैं तुम्हारी तरह फलसफी तो हूं नहीं।
6: हाँ भाई, एक सियासी आदमी फलसफी हो भी कैसे सकता है?
4: मेरा नजरिया है कि वो यकीन की उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हर किरण प्रेम का पैगाम है। वो सत्य है जिसकी गगनचुंबी इमारतें ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के उपदेशों के आधार पर खड़ी है।
5: हो सकता है मेरे दोस्त तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे विचार सही हो, लेकिन सच पूछो तो ये विज्ञान का दौर है। अब हम जमीन की बातें कम और आकाश की ज्यादा कर रहे हैं। जरा सोचो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है
4: जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
7: हाँ, ये तो है।
5: आइए मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस कहानी ने जन्म लिया।

कुछ नहीं, मेरा वहम। आज मुझे फौजिया की याद फिर सता रही है। फौजिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी और फर्रुख की मोहब्बत कितनी सच्ची थी। कौन? कुछ भी तो नहीं। आज कितना डर लग रहा है मुझे, अंधेरा भी तो छाया है। मेरी पूरी जिंदगी ही तारीख हो चुकी है। मैं पपी जो हूं, आज मेरा शरीर खुद मुझसे नफरत करने लगा है। मैंने सुल भी तो किए अपनी फौजिया पर।

0: शायद जिंदगी भर अब मैं इन गुनाहों की आग में सुलगता रहूं। फौजिया, मेरी फौजिया, मुझे माफ कर दे। और फर्रुख, हो सके तू भी इस गुनहगार को बख्श दे। फौजिया, फौजिया, माफ कर दे। मेरी फौजिया वो पागल है, तू आएगी
1: सुहेल, होश लाओ। ये क्या?
0: मुझे माफ कर दे फौजिया, तुझे अपनी निशानी की कसम।
1: होश लाओ सुहेल, क्या बात है? बोलो बोलो, कौन फौजिया, कैसी निशानी?
0: माफ करना सुहेल, मुझे डर लग रहा है।
1: क्या बात है, क्यों डर रहे हो?

0: तो फौजिया फर्रुख से मोहब्बत करती है और मैं इस आग में जल रहा हूं। कब तक मैं अपने को इस कमरे में बंद रखूंगा? फौजिया को भुलाने की कोशिश करता हूंगा, लेकिन क्यों? क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं? सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार वही है जिसमें बलिदान का जज्बा हो, अपना स्वार्थ न हो। फर्रुख और फौजिया
1: और मैं अपनी मोहब्बत
0: एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो, मेरी मोहब्बत अंधी क्यों ना हो, लेकिन मैं हर हालत में फौजिया को हासिल करके रहूंगा और मैं अपनी राह में आने वाले हर कांटे को हटा दूंगा।
2: रुक जा अपने नापाक इरादों से बाज आ, वरना पछताएगा, जिंदगी दुभर हो जाएगी। रुक जा, बाज आ, रुक जा।

0: मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारी जान।
1: सुहेल साहब आप?
0: हाँ मैं, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं
1: तो आप मुझे अपने रास्ते से हटाकर फौजिया को अपना लेंगे। क्यों?
0: हाँ
1: फिर भी आप फौजिया को अपना ना सकेंगे
0: तो तुम नहीं मानोगे तो
2: छोड़ो
0: तुम्हें नहीं छोड़
2: छोड़ दो मुझे
0: नहीं।

0: एक बीवी जो आज भी वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है।
1: फर्रुख का क्या हुआ सुहेल?
0: फर्रुख, सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा।
1: क्या?
0: मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था।
1: फर्रुख? वो हाँ, पागल?
0: हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रिस्तान तक गया, लगता था वो पागल नहीं है, रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है। लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई और मिट्टी डाली जाने लगी तो कुछ कहता हुआ भाग रहा था।
2: अभी
0: मेरी बच्ची

0: मैं रोने लगूंगी।
1: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
0: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अभी अब मैं कैसी लग रही हूँ?
2: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
0: तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे। अब आप खुश?
2: फौजी
3: मेरी बच्ची।

0: प्यार मोहब्बत और कर्तव्यों के इन्हीं पाकीज़ा जज्बात की नींव पर ही मानवता की इमारतें खड़ी हैं।
1: जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।

हमने कहा हाँ ये अच्छी तरकीब है, तो हमने वैसे निमंत्रण छापे, उनको बेचे। और सखाराम बाइंडर की तो बहुत हवा थी, क्योंकि बम्बई में तो तूफान मच चुका था सखाराम बाइंडर को लेके, तो दिल्ली में भी फिर लोग, और फिर हमारा ग्रुप भी नट्यद्वयी अब तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तो फिर देखते देखते सब हमारी निमंत्रण ही कहो बिक गई। और फिर जिस दिन खेल था, हमें कुछ नहीं बताया, वो उनके लोग चुपचाप आके देख रहे थे, और बाहर में हमने कुछ बेचने के लिए, हम बिल्कुल मतलब उसमें हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये तरीका दूसरा था ही नहीं, उन्होंने दरवाजे बंद किए थे, अब हम क्या करें। फिर उन्होंने वो लिए एक दो खरीदे हमारे निमंत्रण, और फिर हमारे घर 2-3 दिन बाद उनके लोग आए कि आपको कानूनन ये करेंगे क्योंकि आपने बहुत गुनाह

0: हो सुर जाएंगे शायद मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के।
1: बड़े दिग्गज लोग।
0: एब्सोल्युटली जलाल आगा,
1: ओहो,
0: साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर है शाम बेनेगल की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक की हीरोइन, फिर राकेश पांडे
1: जी
0: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन,
1: उनको लेके एक फिल्म लॉन्च हुई थी संगत।
0: किसकी?
1: राकेश पांडे को लेके कुछ कुछ फिल्में लॉन्च हुई थी पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
0: नहीं उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना बासु चैटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
1: उसमें
0: उसका हीरो था
1: जी।
0: हाँ राकेश,
1: बाद में बासु दा ने एक फिल्म लॉन्च की थी संगत, उसमें अच्छा, भी वो हीरो थे पर वो बनी नहीं।
0: वो नहीं वो उसका ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने। यहाँ तक कि मुझे एक बार बहुत सालों बाद हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में और राकेश एक मेंबर थे जुड़ी, तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले और किसी ने मुझे कहा कि राकेश है भोजपुरी का अमिताभ बच्चन है वगैरह वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। अभी मोटे वोटे हुए थे तब, दुबला पतला था जब मेरे क्लास में था, तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया।
1: शैलेंद्र सिंह वगैरह भी थे?
0: नहीं नहीं
1: अच्छा।
0: मेरे क्लास में नहीं ना। तो ये हुआ और हाँ जब मैं थी अगेन इश्तहार टेलीविजन तब शुरू हो गया, और हाँ उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बन रहा था और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के, हाँ बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोजाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे। तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई कैसे गई, और मुझे किसने कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर सेकेंड टाइम, पुलर देशपांडे।
1: हाँ
0: क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली, हाँ सब रवैया, तो वो थे और उन्होंने कहा अरे सही तू कदी अली बड़े खुश देखकर, क्योंकि उन्हें से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से
1: जी।
0: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्ना सा स्टूडियो और उसमें वो तीन कैमरा और हर

0: ये पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, उसमें से मैं एक हूं, ये मुझे बहुत नाज के साथ
1: क्या शानदार बात है, वाह वाह,
0: बहुत नाज के साथ मैं कहती हूँ। और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे, कुमार वासुदेव, पी कुमार वासुदेव, जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक सुरेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी, और हबीब तनवीर थे।
1: क्या बात है, वाह वाह।
0: लेकिन हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम चार रह गए, लेकिन ये हम छह लोग थे पहली पलटन में, तो विच इज वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड सो इट वॉज फैबुलस, एट मैजिक इयर्स इन टेलीविजन। और वहाँ ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है, क्या करना है, जो मर्जी करो, क्योंकि देर वॉज नो एग्जाम्पल, यू नो, कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमें सिखाने जरूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये BBC से आए थे, वॉरन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह, लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे
1: जी,
0: हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविजन में, और मजा भी बहुत आया।
1: वहां आपने बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, अबू अवार्ड जीता,
0: यस, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, तेहरान में,
1: वो चाय की टपरी वाला,
0: हाँ जी, वो छोटी सी फिल्म थी, 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं टेलीविजन में। और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे, हाँ, उस होश उड़ जाएंगे शायद मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
1: बड़े दिग्गज लोग,
0: एब्सोल्युटली, जलाल आगा, साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर है, और छोटी सी औरत, ये तगड़े वहां ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी, और बिल्कुल वो मजे से उसका चल रहा था, और इट वॉज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा, तो इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल कि हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, तो इट वॉज, इट डिडंट हैव एनी डायलॉग, नथिंग, तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया, और हाँ, मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म बनाई, मतलब ड्रामे ही हो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह से।
1: जी जी, हाँ, पोस्टर बनाने वालों पर काम किया,
0: पोस्टर, हाँ, दैट वाज आल्सो, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री। तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे, हाँ, एक पूरा
1: हैंड पेंटेड पोस्टर,
0: हैंड पेंटेड, हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका, और वो बेचारे कहीं गैराज वराज जगह उनको मिलती थी, वहां वो अपना ढेरा लगाते थे, ढेर वैसा पोस्टर्स पड़े हैं, और वो अपने कच्चे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे। और वहां हम पहुंच गए, तो क्या बात करें वो लोग, और मतलब पूरी दिल्ली की स्काईलाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना, तो उनसे फिर बातें की, तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था, और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे, तो उसने कहा कि भाई हमारी ये असली लोक कला है,
1: वाह,
0: इसको लोक कला कहो, क्योंकि लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को।
1: क्या बात,
0: तुम लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहाँ पैसे दे टिकट खरीद के देखते हो, और हमारी कला तुम्हारे पास आती है, हाँ, और मुफ्त में, वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कील पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा

0: खरीद के देखते हो और हमारी कला तुम्हारे पास आती है हाँ, और मुफ्त में वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा झुके, उनकी बिगड़ती है वगैरह वगैरह, इतने चाव से वो बोला। मैंने कहा कान छुए मानती हूँ और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो। तो इट वॉज, अब ये पूरी डर नो मोर, पूरी गायब हो गई है,
1: पूरी
0: पूरी
1: वो, क्योंकि आपके
0: कॉम
1: पोस्टर सब
0: कॉम
1: डिजिटल हो
0: गायब
1: गए
0: हो गई।
1: है ना। एमएफ हुसैन मिले थे जी,
0: हाँ, अरे सॉरी, अरे एन एफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक यू। मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। क्या है, किसी ने बताया कि अरे एन एफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर। आई
1: महाराष्ट्र
0: सेड
1: में एक बड़ी
0: तोबा,
1: परंपरा थी
0: हो
1: जी।
0: तोबा तोबा। मैंने कहा अरे तब तो उनको पकड़ना ही है। और इत्तेफाकन मेरी एक दोस्त के, वो बहुत अच्छे करीबी थे, तो उसे मिले और वो बहुत ही, ही वॉज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन। तो बहुत खुशी से वो, हाँ मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया। और क्या कहूँ, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था
1: जी
0: तो जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा। और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, अठन्नी दी थी,
1: अरे अरे
0: अठन्नी। ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाई।
0: हाँ,
1: ये
0: यस,
1: ख्याल कैसा आया था और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिनाई का जिक्र किया क्योंकि इसको
0: कठिन,
1: तौलो तो ये नाराज वाला जो
0: हाँ
1: मामला था
0: नहीं,
1: वो
0: वो
1: बताइए
0: कठिनाई आई और फिर उनको निपटते भी गए हम
1: जी।
0: बड़े चाव से। तो
1: ये
0: ये
1: आइडिया कहां से आया?
0: आइडिया ऐसा है कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था, पंकज दा को।
1: जी
0: हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए। तो फटाफट मैंने, मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को। वो तो बहुत खुशी से मान गए, हाँ, वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो। फिर थोड़ा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज मलिक, नहीं, नो फिल्म। वो ऐसे बड़ी आवाज थी उनकी, बुलंद,
1: हाँ
0: कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म। ऐसे नहीं नहीं दादा, ऐसे कैसे वगैरह वगैरह खूब। फिर मैंने अपना इतना चार्म कर ऐसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा प्लीज ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए जरूरी है, ये फिल्मों के लिए जरूरी है, हमारे लिए वगैरह वगैरह। पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राजी हो गए। और मुझे इतना याद है, वो मुझे माय डियर सिस्टर
1: हाँ
0: करके
1: वो इसी तरह
0: पुकारते
1: बोला
0: थे।
1: करते थे और
0: हाँ
1: खरजदार आवाज में रुक
0: बिल्कुल,
1: रुक के
0: माय
1: बोलते
0: डियर सिस्टर करके फिर
1: थे
0: हम भागे जाते थे पंकज के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक, मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया और उनका वो गाना दो नैना मतवाले,
1: मतवारे
0: हाँ
1: हारे
0: हाँ
1: हम पर जुल्म
0: और
1: करें।
0: मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया। मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बीन रही है कुछ, चावल लेके थाली लेके, और आप गाना गाओ। तो ये, और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो। और दीदी पास सुन रही होंगी, तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया। और फिर दादा उसमें रंग में आए और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे, हाँ, उन्होंने कहा
1: वाह
0: वैसे
1: वाह,
0: क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया। और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब खरीद खरीद के देखते हो और हमारी कला तुम्हारे पास आती है हाँ, और मुफ्त में वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे बोराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है,
1: ऑर्केस्ट्राइजेशन।
0: बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं, हाँ मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
1: जी जी
0: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो।

0: साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में, कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों?
1: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहाँ इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपीहा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था किसी के भी बीच, एक को खोया खोया सा कुछ लगा।

0: साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में, कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों?
1: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहाँ इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपीहा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था किसी के भी बीच। एक को खोया खोया सा कुछ लगा। व्यू करवाया था तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया था। हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है और वो बढ़िया ये रोल करेगा। फिर मैंने फोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है, तब अमोल ने कहा अभी देखो सही मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो। मैंने कहा हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन वो कहा कि शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है फिल्म मिरर करके एक पत्रिका की, तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है पार्टी। मैंने कहा इत्तेफाक

मैंने कहा नहीं 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अब खत्म करते हैं। मैंने कहा नहीं अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है। और तनुजा मुझे आंखें फड़के देखे, ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराजी हो गई थी उनके बर्ताव से, और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ ना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगी क्या? मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए, 2 दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना, और फिर मिलते हैं। फिर हम मिल गए और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, B.R. चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और G.P. सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बसु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बाशु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया। तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुझे प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो कुछ भी मेरा चल रहा हो काम, मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं तो इंटरेस्ट नहीं हूं। और इसकी वजह ये थी कि बासु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहां उनको बहुत बुरा ये उनका ये

0: उनको एक मैसेज भेजा
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, बाड़ी जो चलाता है हाँ, उसका नाम है बार्किस,
1: बारकेस
0: बार्किस, और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दूसरे
1: कनेक्शन
0: को
1: है।
0: चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा, और पेगटी बेचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए, तो लेकिन बार्किस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
1: चिकनी
0: चिकनी
1: चुपड़ी।
0: चुपड़ी हाँ। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बार्किस इज विलिंग,
1: वाओ।
0: मतलब बार्किस राजी है, राजी किस लिए, शादी के लिए, और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। एनीवे, तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बार्किस इज विलिंग,
1: वाओ।
0: और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि बार्किस क्या बला है, क्या है हाँ। तो
1: हाँ।
0: फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड
1: क्या बात है, इसको कहते हैं नहले पे दहला।
0: नहले पे दहले, बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: जी
0: फिर काम शुरू हुआ, एंड ही वाज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन, एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य
1: यस
0: अकादमी का
1: बिल्कुल।
0: हाँ।
1: और नसीर ने काफी तैयारी की थी स्पर्श के लिए।
0: अरे बाबा काफी नहीं, कुछ जरूरत ज्यादा कहो
1: जी
0: वो उसका किस्सा मुझे सुनाने दो,
1: जी
0: कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है ये

0: वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे वासु भट्टाचार्य, इट वॉज सच अ डिलाइट। इतना बोलते वक्त मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह उनका भाषण सुना। वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिनका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब, फिरोज रंगून वाला।
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: फिरोज रंगून वाला किताब। तो बासु बात कर रहे थे और मैं आई वेड गॉन टू हियर फॉर द लॉन्च, आई वॉज इन्वाइटेड। तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म बनेगी खूब अच्छे स्टार से, कहते ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहते मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिल्म। ये दोनों को लेकर भी, तो ये बहुत
1: अनुभव
0: गलत है कि स्टार हो तो, इसलिए बासु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटास्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर हमारी दोस्ती बन गई। अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड बासु। और हमारे फिल्म को अनफॉर्चुनेटली कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जिंदाबाद
1: नारा बाहर समस्ती रक्त गरम से निजे निजे आगे बढ़िया चेस्टा कर
0: कल्पना भी करी परिवानी सेते साहस दरकार से डी जी पई तबे सर युद्ध समय निजो आखी सामने आपण निजर साथी जवान मानंगर शरीर को चारियाडे पडितिबार देखुचंदी तांकु होरौ से मानंगु देखुचंदी आपण एंति कष्टरे पडिचंदी से सी मुहूर्तरे आपणकर मनकु कोन केमति आसीथि भावना निजो केमति संभालैथिले आपण कोंतु
1: जेतेबेले आमे आगे अग्रसर करथुलु हां आमो पखरे गुलीबाजी बहुत सैन्य हमर भाई माने निहत होय पडथांदी आमे देखुचो हेले मते किछि करि पानु कारण जदि से बंचि जे तांकु फर्स्ट एड दो प्राथमिक चिकित्सा करू।

आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम के सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था कि तू पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चंदूली ले ली होती।

सुदूरु सदर अपहंच अंचल स्वर उत्सव महोत्सव सभा समिति समारोह प्रगति दुर्गति और संगतिर अभिव्यक्ति को नहीं आंचलिक संवाद विभाग

आकाशवाणी ब्रह्मपुर आरंभ कार्यक्रम सुनते आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र एफएम दशमिक मेगा सगे आसतु शुणा माननीय प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेन्द्र मोदी मन की बात कार्यक्रम ओडिया अनुवाद रिले कर प्रचार करचु आकाशवाणी कटक केन्द्र।

0: स्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कहते आज भारत केवल निज वीर मानक स्मरण करू ना, बरंग से गौरव गाथा को नूतन पीढ़ी निकट में पहुंचाऊ। यही भावना को नहीं चलित वर्ष शौर्य विजय जात्रार आयोजन करा जाएगी, जहार वार्ता रही एक जात्रा एक राष्ट्र एक सलाम।
0: साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड।

0: तापमान रात को -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जहां ऑक्सीजन की भारी कमी हो, जहां साधारण इंसान का जीवित रहना ही अपने आप में एक चुनौती है, और उसके ऊपर एक और चुनौती थी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, यानी दुश्मन ऊपर और बंकरों में सुरक्षित बैठा हुआ था और हमारे जवानों को
1: स्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: प्रधानमंत्री कहते आज भारत केवल निज वीर मानक स्मरण करू ना बरंग से गौरव गाथा को नूतन पीढ़ी निकट में पहुंचाऊ। यही भावना को नहीं चलित वर्ष शौर्य विजय जात्रार आयोजन करार बार्ता रही एक जात्रा एक राष्ट्र एक सलाम।
1: साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड।
0: कहानियां सुनाती हैं तो उनकी कहानियों में कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा और इन जैसे नौ जाने वीरों का जिक्र होता है। हमने इन वीरों को अपनी धरोहर बनाकर रखा है और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां इनके शौर्य से प्रेरणा सदैव लेती रहेंगी। यही कारण है कि कारगिल विजय दिवस हमारे लिए एक सामान्य दिवस भर नहीं है, यह हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा का दिन है जो व्यक्तिगत सफलता और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच का अंतर समझना चाहता है। यह दिन हमें सिखाता है कि सैक्रिफाइस और सर्विस का भाव ही किसी भी राष्ट्र की रीढ़ हुआ करता है। इन तमाम विविधताओं के बावजूद इन बलिदानियों का खून एक ही रंग का और यह खून इसी एक मिट्टी में गिरा।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेली मानस के निशुल्क नंबर 1446 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितता से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के
4: कर्तव्य के बीच का अंतर समझना चाहता है। यह दिन हमें सिखाता है कि सैक्रिफाइस और सर्विस का भाव ही किसी भी राष्ट्र की रीढ़ हुआ करता है।
2: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत से चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की।
3: के लिए उच्च स्तरीय
2: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी,

0: नीतियों और जारी कार्यक्रम
1: का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्य प्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार गया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। जो विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़े डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक अपन
3: दुश्मन की चुनौती हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प

0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
1: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है और न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट पर आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगियो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
2: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम ट्वेंटी क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने के ओंटारियो में विश्व स्कॉच जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज से। फिल्म का नाम है जानी दुश्मन। गीत वर्मा मलिक का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की उड़ाली उनकी यादों की 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विद भारती पर
5: सुनिए।
6: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में हाथ की सफाई फिल्म का गाना, गीत गुलशन बाबा ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

वक्त की आवाज़, जी हाँ ये नाम है फिल्म का। इसमें आप सुनेंगे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, गीत अनजान का है संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह को सुनिए। फिल्म का नाम है परवरिश, गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने सुना परवरिश फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शरीन सिंह की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है कर्म, गीत लिखा है राजकवि तुलसी ने, संगीत आर डी बर्मन का।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि इंसान को उठना है, हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोच तो ये लगता है अरे हमको जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज ये फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है अनूठे संगीतकार।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासुवास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फड़के का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुळकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुढ़चा पाउस, जीवारा सखा, लाखाची कोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जा रहे वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुन।

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि ग. दि. माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: तव मानसि आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व तव मानसि आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध शब्द कभी

सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

0: पनि विद्यापति आसी पहुँचि गलेनि। आस आस विद्यापति आस, आसन ग्रहण कर।
1: अवंती नरशंकर केउ सेवा करी निजकु मो धन्य मणि ताहे सेवक प्रति आदेश हो महाराज।
0: विद्यापति पवित्र उत्कलर नीलकंदर रे भगवान श्री विष्णु नीलमाधव रूप पूजा पाउछंती बोली संवाद मिलजे। आउ यहार सत्य सत्य जानिबाकु तुमको अविलंब उत्कल यात्रा करि पड़िबो।
2: विद्यापति तुमे नीलमाधव को संधान नै नफेरिया पर्यंत आमो तुमो फेरिया पथकु अपलक नयने राही बसिथिबु।
1: जगत पिता परमेश्वर को ठाव करिया पई ए अकिंचन सौभाग्य लाभ करथिबारु मो जीवन आजि धन्य होइछ महारानी।
0: तुमे ताहले जा विद्यापति, काली प्रत्युषरे शुभलग्न देखि उत्कल अभिमुख यात्रा अनुकूल करिबा लागि प्रस्तुत हेबो। जा
1: आदेश तप श्रद्धार्ज्य अवंती राजा।

0: ए पानी जति शीतल सेतिकि मधुर भगवान तुम मंगल करंतु
1: हो भगवान केबे जे मंगल करिवे एबे पिंडा उपर मृग छले पारि देछि आपण बसंतु आज आपण हमर घरे कुणिया
0: कुणिया तुम घरे ना ना
1: काहे कि गरीब घरे कुणिया हबा को पसंद करंती नै ना
0: ना ना से कथा न ललिता मो भाबुतिल कि
1: कोन कोसी
0: कथा कोन कि मु विदेशी तु अपरिचित एकुटिया तो कौन सी रमणी घरे
1: ओ घरे की पुरुष न थी बार कुणिया हबो डरी जाउ चेंदी ना ना ना आदो डरंतु नहीं गोसी मो साबर राजा विश्वबसुंगर अन्य बापू मन गले एहिनी फेरुतिबो
2: ए ललिता
1: हे
2: आलो मालो

0: बुझलने बापू जेमति से बाघ गर्जन शुणी ना चानियार पूरा एका बेले के तड़ू खसी पड़िले
1: अरे ताकर के जे खेती है नै त मा
0: नाही मा बापू मु पर सेते बड़ को तांको पाखरे पहुंच सेतिले आ संगे संगे तांको हाथ को धरी पकी ऊपर उठे आनले तानाले तानाले से कथा मन पड़ला ना बापू मो छाती खाली पर कोन हे जोची
1: अच्छा अच्छा अच्छा प्रभु नीलमाधव पार करुणा मा गोसाई कर किसी अनिष्ट है जाए प्रभु पूजा टा सारी आसे हाँ शुण संज कड़े जीवन गोसाई की बारण करू
0: जाऊ बापू तो
1: आते
0: ओ घरे की पुरुष न कुणिया हम डरी जाऊँ ना ना आदो डरतु नहीं गोसाई मो साबर राजे कहले कहले कहले ठाकुर जी तमरे हाथ को मो हाथ रे चिरा दिन पई छंदी दियंते
1: ए बिना

0: दर्शन
1: करद्यापति
0: तम नीलमाधव को निश्चय दर्शन कर गोटे शर्त मु तुमको नहीं नीलमाधव को देखे हेले नीलखंदर जीवा बाटट को देखेबी ना
1: अर्थ
0: मु तुम आखिरे अंधपुटी बांधि नीलखंदर को नहीं जी अदीय दर्शन सरले पुणी से ही परिणी एठारे छाड़ीदे कह मोर शर्त तुम्हें राजी तो
1: मु राजी सब राज मु राजी
0: बेश ताहले तुम्हें जीवा

0: नीलमाधव दर्शन न कर मो पक्षे भल हम एक जाते मन पर देखिपर
1: तमको मरण तमें बापू कथ को मटे धरव ना नीलमाधव प्राण अधिक प्रिय मु तो कथा दौची नीलमाधव को तमें जमी एक दर्शन कर उपाय
0: उपाय कर
1: तमें खाली नीलमाधव को गला अंटी किसी सोरस बांधि नहीं जीव आपू अजाणत कौशल कर सोरस को बाट जाक बुणी बुणी जीव किसी दिन पर बुणा सोरस गचर आिन्ह चिन्ह तुम एक नीलमाधव पहुंची पार
0: चमत्कार उपाय तुम्हारे बुद्धि को मु प्रशंसा नक रही पार नुता तुम प्रकृति बुद्धिमती आ चतुरी
1: ताहले मो पढ़ा मानी एथर को सुन्ना प्लेट पर सोई पड़ा
0: बेस राजा विश्वभ सुनंदिनी रानी ललितांकर आदेश मम सिरदार छ

0: महाराज
1: कुहराणी
0: विद्यापति रे एपर्जंत काहे की पेले नाही तांका यात्रा पथरी कोनसी विघ्न घटी नै ताऊ
1: ना ना से परी काहे भाऊ चराणी से जते बेले देवकार्य रे जाई छंती तुमे देखिबो से निश्चय तो कार्य ही फेरिबे
2: अवंती महाराज अगर जय हो
1: के विद्यापति तुमे आसी छ विद्यापति
0: नीरा माधवकर संधान तुमे पाइलो विद्यापति
1: कह कह विद्यापति उत्कर तुमे की संवाद फेरिछ
3: संवाद अति शुभ महाराज
0: शुभ
3: देखी आसिली निघन चरण्यर नीलकंद रे विषभूषु नाम रे जने सबर राजा नीरमाधव को बणर फलमूल खुआई पूजा करछंती अपूर्व अपूर्व शोभा महावट वृक्ष तले सुशोभित वेदी उपर प्रभु नीलमाधव चतुर्धा मूर्ति पूजा पाउछंती
1: विद्यापति
3: कर्पूर चंदन बास रे सारा अरण्य महकी उठुछि माधवंकर से हस हस श्रीमुख शोभार पटांतर नाही महाराज से दृश्य मन पड़े देहर मोर रोमांच जात हो महाराज से शोभा अपूर्व अपूर्व शोभा
4: शून्य बाणी जो दिन अवंती राजा इंद्रद्युम्न लोक आसी नीलमाधव को दर्शन करिबो नीलमाधव नीलकंदर छाड़ी चल
0: विलंब करनी महाराज प्रभु नीलमाधव को सम्मान अणई यही प्रतिष्ठा कर।

0: राणी गुंडिया
1: महाराज
0: प्रभु निकट में आम परीक्षार कौन शेष होबना राणी
1: एमती कहीं कहते महाराज कौन है
0: प्रभु स्वेच्छार दारू ब्रह्म हो बांकी मुहाणा विजय हेले फाट बाट सैन्य सामंत घेनी आने को गलजे दारू टीपे मात्र भी हलिले ना कि चंकिले ना शेष को आज्ञारे पूरक शबर राज विश्वावसु आ विद्यापति दारू को छुईवा मात्र के दारू बेदी उपर को अणगले किंतु वर्तमान पुणी एक समस्या उपस्थित प्रभु पुणी कटाल कर बस
1: तुम कथा मुझे बुझीपारे महाराज प्रभु पुणी की कटाल कर
0: बढ़ई कूल श्रेष्ठ बिंधाणी मैंने आप्राण चेष्टा करी

0: कौन अच्छी कौन अच्छी रानी गुंडीचा तुम्हें खूब बिब्बर जाना पड़ते जे पता कौन
1: से बुढ़ा बुढ़े गंभीर भीतर रही बरा आज की 14 दिन हो गला हेले मूर्ति गड़ व्यवहार शब्द किछि तो जाना पड़ू ने देव कबटे कान पर सुनली किछि सुना जाऊ नहीं
0: मत भी तो आश्चर्य लागु छी रानी एक ही दिन पूर्ण हवा को आहुरी 7 दिन बाकी से बढ़े तो सत्य कथा भाबिबो बेळकु
1: इपाखर ता दुर्ब शरीर कथा भाबिले बेळकु ओ मनु कहि कि पाप छुचि स्वामी शिष्य को आमे पुण्य अर्जन करबा परिवर्ते नरहत्या पाप भागी हो बनाई तो
0: ना मु किंतु निरुपाय रानी निरुपाय बुढ़ा महारंग सत्य ना ना असंभव मु पारिबिनी रानी मु पारिबिनी

0: ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମୟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରାତି 11:00 ଶୁଣି ଶୁଣିବା ହିନ୍ଦୀ ସମାଚାର ଏବଂ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମାଚାର ରିଲେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ର।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ

0: उत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक में नाम किया। इसमें 85 किलो स्नेच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल है। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नेच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somnath, IIT Chennai director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit